इंस्पायर एफएम की वेबसाइट पर मिलेगी आपको बेशुमार मालूमात, लुटन में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम, लुटन कम्युनिटी की खबरें और बहुत कुछ। विजिट कीजिए www.inspirefm.org।

0: £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.oneumma.org.uk.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: Road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
1: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
2: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Wake up for Fajr to catch the morning's quiet blessings, using the early peace to plan your day. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
5: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं, और फिर जोनसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: तेरे
1: बोल के लबाजात हैं तेरे, लहरों के दोष पे आवाज़ के खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस शो में, इसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आज का ये अफन लिस्टन आज़ाद शो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जी। आज आपका स्पेशल कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा हमको, क्योंकि हमारी आवाज़ थोड़ी देर में बैठ जाएगी लेकिन वादा हमने किया हुआ है मंडे और वेंसडे का, इसलिए वादा पूरा ज़रूर करेंगे हम। आज हमने सोचा अगर रेगुलर डेज में होते, जो महीना पहले कि जो मी टाइम जो चल रहा था हमारा, जिसमें हमने ये बात की थी, 3 महीने का मी टाइम जो है, बल्कि 4 महीने का हमारा, उसका पार्ट 2 जिन लोगों को चाहिए वो ज़रूर जी, अगला शो जो है हमारा मी टाइम वेंसडे को जो इंशाल्लाह शो होगा वो होगा मी टाइम का पार्ट 2। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, कुछ चीज़ें हमें समझ आती हैं आसानी से, कुछ चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं, वो सारी बातें करेंगे आपके साथ और बहुत सारे इन्जॉय भी करेंगे। तो आज का ये शो हमने आपके लिए किया है ताकि हमारी तबीयत भी ठीक हो, आपकी तबीयत भी ठीक हो। नया नया मौसम और ठंड जो है वो लगती है, गर्म सर्द हो जाते हैं, सर्द गर्म हो जाए, गर्म सर्द हो जाए, अजीब बात है ना। एक ही फ्रूट है, गर्मियों में आता है उसको गर्मा कहते हैं, सर्दियों में आता है उसको सर्दा कहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हम भी गर्मियों सर्दियों में आपके साथ आके बैठ जाते हैं, गप लगाते हैं। नंबर है स्टूडियो का 9725019390 और व्हाट्सएप नंबर है तमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे साथ कनेक्टेड रहने वाले लोगों के लिए 9727413883। तो आज का थैंक्सगिविंग का माहौल ख़त्म हो चुका है, इसलिए लोग छुट्टियों से वापस आ चुके हैं और आज हम उम्मीद करते हैं कि शो जो है वो हमारा जैसे रूटीन में लोग प्यार मोहब्बत करने वाले मेहरबान आते हैं और अपना अपना हिस्सा डालते हैं शो में, तो आज तमाम लोग आएंगे। सो चलिए देखते हैं जी, पहला कॉलर कौन है आज का रेडियो आज़ादी रौंदिया।
2: अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी।
1: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लगता है टर्की खा के और सूप शूप पी के फिट हुई हुई आप
2: बस जी हाँ बिल्कुल, टर्की की तो बड़ी मजे की होती है वाकई में, और स्पेशली मुझे सिर्फ एक टर्की पसंद है आजादी, वो है जिमीज की।
1: जिमीज
2: और मैं जी, मुझे इतने सालों यहाँ पर मैं रही हूँ यूएस में, लेकिन मुझे कभी भी ऑनेस्टली मैंने टर्की नहीं खाई थी जब तक मैं डैलस में नहीं आई थी, और मैंने बिलाल भाई के हाथ की, क्योंकि वो इतनी जूसी, इतने मज़े के उसमें मसाले डालते हैं ना, तो वाहिद वो टर्की है जो मैं खाती हूँ, वरना मुझे उसके साथ जो पूरे लवाजमात जो होते हैं सॉसेस वगैरह मुझे नहीं समझ
1: आता। टर्की वैसे बड़ी खुश्क हो जाती है, लेकिन जब तक आप उसको मक्खन के फेंटे ना लगाए ना, उसको मक्खन के डोबे लगाने पड़ते हैं उसके ऊपर रखने के लिए, जब तक वो ना लगाए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए मक्खन बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों को पकाने के लिए।
2: जी बिल्कुल सही बात है, और आपका लास्ट जो शो था बड़ा मजे का था, और वो जो आपने बात की थी चाय वाली बात तो बहुत ही मजे की।
1: कौन सी बात, हम तो मौके पे करके निकल लेते हैं, कौन सी बात थी
2: आपने, आप बता रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ चाय आप भूल गए थे रख के, तो आपने कहा हो सकता है मैंने माइक्रोवेव में छोड़ दिया, हो सकता है यहाँ रखी और आपको फिर
1: अलमारी से निकले
2: जी
1: हाँ जी, तो मैंने कहा मैं तो चलो फिर खुशकिस्मत हूँ, मैंने चाय की प्याली रखी थी जो निकल आई, आप लोग तो रिश्ते वहाँ रख के, सेहत वहाँ रख के, रब के साथ रिश्ते अलमारी में रख के भूले हुए हैं
2: वही तो आपने फिर हमारी जो है ना, हम हंस रहे थे तो आपने कहा एटलीस्ट चाय रखी है, रिश्ते ऐसे नहीं रखे, बाकी हमारे तो हाल ही बुरा है।
1: हमें कई लोगों ने ना दिमाग को भी वहाँ रखा हुआ है कि इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये खराब हो जाएगा कहीं, हालांकि ये पैराशूट की तरह है, खोलेंगे तो काम करेगा, तो हम में से कई लोगों ने ब्रेन भी अपने अलमारी में रखे हुए हैं कि इसको क्या जरूरत है इस्तेमाल करने की।
2: सही बात है, और आज आपका जो मिनट ऑफ द डे था बहुत खूबसूरत था, इल्म की कीमत और कमालात। अच्छा मुझे ये बताएं आज़ाद जी कि ये जो आप लिखते हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो कैप्शनिंग जो आप करते हैं, ये कौन करता है?
1: ये भी हम नहीं करने होते, और कौन करता है? उस वक्त जब सुनते हैं आदमी ना, पहला क्लिप पूरा सुनते हैं 2 मिनट का, फिर ये देखते हैं कि ये सही बैठा है कि नहीं बैठा, और अगर इसमें ये कम्प्लीट है कि नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि तश्नगी रह जाएगी या कोई बंदे का कोई एंगल रह गया है, तो ये जो असल मेहरबानी और कमाल उस बंदे का है हमारे जो ये शोज़ सुनते हैं और उसके बाद इसके क्लिप्स बनाते हैं, मेहनत सारी उनकी है, फिर जब हमारे पास आता है तो हम उसकी नोक पलक हल्की फुल्की संवारनी होती है, तो जो कि बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर उनको जितनी समझ आती है वही बड़ा होता है वो क्लिप, कभी मुझे बड़ा छोटा करना हो तो और बात है, और उसके बाद तो नाम और नाम उसका फिर वहीं पर आता है।
2: अजा जी इतने यूनिक, इतने डिफरेंट होते हैं ना, और हर आपका जो मिनट ऑफ द डे होता है उसका बिल्कुल मतलब वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है, और उसमें जो आपने बात की है ना इल्म की, कि मतलब हमारे लोगों के लिए जो कि ब्लेस्ड हैं उनको समझ आ गई है, वो विजनरी हैं, उनको पता होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो अगर मतलब ये मुझे आपसे पूछना है कि ये जो चीज होती है, ये हमारे अगर फर्ज करें कोई करीबी है तो हम किस तरह से उसको हैंडल करें अगर उसके पास इल्म नहीं है, और अगर एक इल्म वाला बंदा साथ है तो ये उसके लिए ब्लेसिंग है या ये और ज्यादा उसके लिए परेशानी की बात है?
1: असल में ये तो डिपेंड करता है ना वो बंदा क्या है। अगर वो जहालत की ज़िंदगी को अपनाता है और जहालत की ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसके लिए तो अकल वाला बंदा तो मौत है, वो हर बात में उसको निगेशन होगी। तो इसीलिए जब हम रिश्ते बनाने लगते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप किस पैथ के ऊपर हैं। आप जिस रास्ते पर होते हैं उसी रास्ते की बस लेते हैं, उसी रास्ते की ट्रेन लेते हैं, उसी रास्ते का जहाज़ लेते हैं ना। तो अगर आप किसी और रास्ते की बस ट्रेन और जहाज़ लेंगे तो कितना तंग होंगे आप, न मंजिल पे पहुंच पाएंगे, ख्वारी भी होगी, रास्ते में एग्जॉस्टन भी होगी, रिसोर्सेज भी हो सकता है कम हो जाए, परेशानी, जहनी खिलफिशार, ये जितना इस स्ट्रगल में होता है उतना ही रिश्ते में भी होता है इंसानों को। तो दूसरा बंदा इल्म चाहता है, इल्म की रोशनी में रहना चाहता है कि नहीं, उसकी चॉइस है ये कि नहीं, और चॉइस है तो उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब वो एक्शंस लेंगे तो उनकी ज़िंदगी आसूदा सुकून में रहेगी और मामलात भी ठीक रहेंगे। लेकिन अगर वो गलत चॉइस कर लेते हैं, ज़िंदगी उनकी जहालत का जो पेश खेमा है, यानी कि वो जो भी चीज़ें वो करते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो सिर्फ जज्बात घुसेड़ के, जज्बाती बातें करके और इमोशनल किस्म का ड्रामा करना चाहते हैं, तो फिर तो जाहिर बात है इल्म व फजल वाले लोग और इल्म व हिकमत वाला बंदा या बंदी उनके लिए तकलीफ़ का सामान है। तो इसलिए पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कि हम हैं कौन, हम करना क्या चाहते हैं। लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इल्म जो है ये इस तरह फलां करने से हासिल हो जाएगा, फलां करने से हासिल हो जाएगा, किताबें पढ़ने से हासिल हो जाएगा। इसके लिए ये एक्वायर्ड टेस्ट है, जैसे खुशी का लिखा था ना मैंने आज, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। इसको टेस्ट शुरू में हो सकता है आपको ये पसंद ना आए ट्रूथ के बारे में, लेकिन फिर जब आप इसका टेस्ट एक्वायर कर लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरह ये हर एक के लिए नहीं होता। जैसे मुझे मैथ्स और बहुत मेरा ब्रेन जिस तरह का बना हुआ, मैं जितना मर्जी जोर लगा लेता बचपन में और अब भी कि मुझे मैथ्स और उस किस्म की चीज़ें नहीं है, मैट्रिक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये फलां क्या है, मुझे नहीं समझ आती थी, पहले भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। तो मैं जोर लगा कर कहूँ कि नहीं मैं सीख जाऊँगा, मैं समझ जाऊँगा और इसमें मैं PhD करके झंडे गाड़ दूँगा, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें आपके जहन के लिए, आपकी बिसात के लिए, आपकी सोच के लिए होती नहीं। हर बंदा एक तरह का नहीं रब ने पैदा किया, मुख्तलिफ़ चैलेंजेस होते हैं, मुख्तलिफ़ गिफ्ट का सेट होता है और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस होते हैं, और ये इसलिए किए गए हैं कि लोग कम्यूनिटी की सूरत में एक दूसरे के साथ चल सकें। तो किसी को क्या गिफ्ट मिला है, किसी को क्या गिफ्ट मिला हुआ है, किसी को इन दोनों गिफ्ट्स को जोड़ने का गिफ्ट मिला हुआ है, तो हर बंदा अपने आप को पहचानेगा, अपने गिफ्ट को पहचानेगा, उसके हिसाब से ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। किसी से इम्प्रेस होकर आप आलिम से इम्प्रेस होकर आप आलिम या उसका इल्म आपको नहीं मिल जाएगा। आप बेसिकली आपने जो 20-30-40 साल जो आपका जहन जिस तरह का बन गया है या बन रहा था और आप उसी तरह सोचते हैं और समझते हैं चीज़ों को, कई लोग सारी ज़िंदगी गुजर जाती है वो सब्जेक्टिव चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलते, कभी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। कई लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है वो सोचते रहते हैं, परेशान, उनको सोचने का मतलब है परेशान होना, थक जाते हैं, दर्द सर में होने शुरू हो जाता है, हर चीज़ को आधे में छोड़ देते हैं। कई लोग जो हैं उसको इन्जॉय करते हैं तमाम चीज़ों को। तो ब्रेन किस तरह का बना हुआ है, आप उससे क्या लेना चाहते हैं और किसी के पास क्या है जिससे मिलकर हो सकता है आप उनसे ले लें। कई चीज़ें मैंने अपने लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उस काम के एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे लोग हैं, उसकी सर्विसेज मिलती हैं, आप वो ले लेते हैं और फिर अपने गिफ्ट में ज़्यादा टाइम लगा के तो फिर आप उसको दुआ अच्छा करते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, वन साइज़ फिट्स ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं होती इल्म के साथ।
2: तो मतलब ये कि हमें हमारे ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, राइट?
1: जरूर,
2: सोचने में और खुश रहने में।
1: या फिर हमारा जहन किस किस्म का है, हमारा कई लोगों का जहन बड़ा सिंपल तरीके से ऑपरेट करता है और वो बहुत निचले लेवल पे चीज़ें करके कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ों की वो वैल्यू नहीं होती। हर बंदे का दिमाग इस तरह का नहीं होता कि वो चीज़ों को फिगर आउट करने बैठे। डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, जैसे मैंने कहा ना, डिफरेंट किस्म के ब्रेन्स होते हैं लोगों के पास और उसके हिसाब से चीज़ें, आप अगर उस ब्रेन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ चाहते हैं और शिद्दत से चाहना शुरू हो जाएं तो फिर तो ये तकलीफ़ बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो चीज़ आपको उस तरह नहीं मिल सकती। तो इसमें से बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, लोग हैं हमारे साथ और स्टूडियो का नंबर 9725019390। लगता है जी लोग थैंक्स गिविंग मना के आ गए हैं और व्हाट्सएप पर एक मेहरबान हमारे साथ बड़ी दूर से किसी और कॉन्टिनेंट से शायद वीडियो आजाद यूर ऑन दियर।
0: जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: सर जी की हाल चाल, ठीक हो
0: सर जी? बिल्कुल बढ़िया सर जी, आज मूड लाइट है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਤੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ।
1: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੂਡ ਹੈ।
0: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਦ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ।
1: ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
0: ਸੋ ਹਾਂਜੀ,
1: ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ।
0: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਲਰਨ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ I was, maine aapko pehle message bhi kiya tha, like I will join the show in the second half, but then I couldn't control myself. And then I learned, like, it's my impulse.
1: Theek hai,
0: main abhi jaise main aapse baat kar raha hu, main bada calm tha. Abhi baat karte karte mera dil itna dhadak raha hai, like it feel like I just ran a marathon.
1: No bro, ye jab jab na aapke dil mein bahut kuch hota hai, ye pata hai kyun hota hai? Ye feeling bande ko tab aati hai jab aap बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको एक धड़का सा लगा होता है कि पता नहीं वो मैं वैसे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या वो बात उस तरह समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी, या मैं समझा भी पाऊंगा या नहीं। तो इसके लिए हीरा सिंह जी, आपके लिए भी और दूसरे, ये सोचते हैं ना आप इस तरह, ठीक है?
0: बिल्कुल 100%।
1: हाँ, ऐसे नहीं सोचना, इसको सोचना ऐसे है कि मैं, मेरे पास जो है, मैं जाऊंगा ऑन एयर अगली दफ़ा। इस जहन को ये रखिएगा, ये जो जितना दिल धड़कना है या जो मसला है ना, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। फ़ोन पे बात करते हुए आपका दिल नहीं धड़कता, ठीक? ये जो फीलिंग है ना कि और भी लोग सुन रहे हैं और भी मामलात हैं, उसकी वजह से दिल ये रेसिंग किस्म की सिचुएशन हो जाती है। आपने सिर्फ ये सोचना है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन करने की एक जगह है, उनको मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, मैं जो हूँ जो दे सकता हूँ और जैसा भी हूँ, मैं ऑन एयर जाऊँगा, मैं उनसे बात करूँगा, उनको जो बात चाहिए होगी वो ले लेंगे, या वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करके वो अपने काम की बात मुझसे निकलवा लेंगे, ये उनका काम है। मेरा काम है हाजिरी देना, ठीक है? बस आप जब इसको इस तरह सोचेंगे ना, तो फिर रेसिंग करना या वो जो ना थोड़ा सा ओवर चीज़ का हो जाना या घबराहट हो जाना, और उसमें फिर आदमी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकता, आप आउट ऑफ सिंक और आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। मसला ये है कि हम तब क्यों आउट ऑफ सिंक और आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, जब इमोशन टकरा जाते हैं लॉजिक के साथ। तो आपने जब बात करनी होती है तो सिर्फ सोचा करें कि हमने एक चीज़ को फिगर आउट करने के लिए बैठे हैं, उस चीज़ को जब फिगर आउट कर लिया जाएगा तो उसके बाद उसमें इमोशन डालना, उसमें पैशन डालना और बाकी चीज़ें हम डालेंगे। लेकिन जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसको बड़ा सिंपल तरीके से खोल कर समझने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे से जो भी आप बात करोगे ना, कोई भी बंदा कोई भी बात करेगा शो में, या आपसे मैं कह रहा हूँ और आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए से मैं बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ कि आपने सिंपल कंट्रीब्यूशन देने आना है, मुझे जितना चाहिए होगा, जैसे चाहिए होगा, जिस तरफ मुझको लेके जाना है वो मेरा काम है, आपका काम है बस ढीला छोड़ दें आप डॉक्टर साहब के पास आए हैं।
0: जी सर,
1: ठीक, इतना समझ गए?
0: समझ गया।
1: आइंदा इसको, इसी बात को जहन में बिल्कुल ऐसे रख के आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर फ़ोन के अपने कॉल आपने जब करनी है तो आपने कहना, लंबा सा एक सांस पहले लेना है आपने, ठीक है? पूरा एक लंबा सांस लेना है, एक दो दो, दो, दो तीन, ताकि वो बिल्कुल जो यू नो आप काम डाउन होकर रिलैक्स हो जाएं। फिर जब आप ऑन एयर आएंगे, फिर मैं जब आपसे बात करूंगा, तो उसके बाद हम फिर ढीला छोड़कर एक क्वेश्चन होगा आपके जहन में या एक एंगल होगा जिसको आप लेके आएंगे। जब बहुत सारे एंगल जहन में होते हैं ना, तो फिर भी ये हो जाता है कि पहले कौन सा बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो हर रोज़ अपने जहन में सिर्फ एक सोच, एक मसला या एक एंगल लेके आपने ऑन एयर आना है। बाकी मैं बातों बातों में एंगल भी निकाल लूँगा और मसले भी हम मैं खुद ही निकाल लूँगा, ठीक हो गया? Would that help?
0: Definitely. Chal. It makes sense. And again, it's like lots to observe, lots to absorb. Aur mera jaise aapne abhi kaha, mind waise hi kaam karta, there are too many things. Itni entangled ho chuki hai. I'm trying to put them one by one, but like you know, jo pichle dahakon ki jo soch ka jo pattern ban chuka hai, use todne mein अभी आई एम फेसिंग फ्यू प्रॉब्लम्स।
1: ओके, एक प्रॉब्लम की हो रही है फिरज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 25-30 ਸਾਲ ਮੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਇੱਕ ਦਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਮੇ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਕਭੀ ਕਭੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਇੱਕ ਆਧ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਕਾਮ 30-25 ਸਾਲ ਹਮੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸਕੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 25-30 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ 25-30 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋ, ਜਿਸ ਮੇਂ 30 ਸਾਲ ਕੋ ब्रेन वेव से लेके न्यूरो पैथवे से लेके सॉफ्ट एंड हार्ड इंडॉक्ट्रिनेशन से लेके सोचने का एक तरीका बन गया है। सर्टन चीज़ों का रिएक्शन आपके माइंड में बन चुका है पहले से। अब इन तमाम चीज़ों को चेंज करना है तो इसमें आपने बिल्कुल इसको बच्चों की तरह इसके साथ मोल्ड करना है, आहिस्ता आहिस्ता, कभी इसको खिला के, कभी इससे प्यार करके, कभी लाड करके, कभी मुस्कुरा के, ज़ोर नहीं लगाना है। ज़ोर लगाएंगे तो फिर मसले ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक आदमी है जो 25-30 साल का एक बन चुका है। अब उस आदमी ने अपने जहन को उस तरह बदलना है कि ज़िंदगी उसके कंट्रोल में रहे, उसका बैलेंस और उसके इमोशंस भी उसके काबू में रहें, और वो रिज़ल्ट जो चाहता है अपनी ज़िंदगी से, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर सके। तो अपने आप के साथ अब बिल्कुल इस तरह डील करना होगा जैसे आप किसी बच्चे के साथ डील करते हैं, और जल्दी नहीं करनी है। कोई जो बंदे मेरे से ज़िंदगी में नहीं कुछ रिज़ल्ट, सिर्फ उस बंदे का आया जिसको जल्दी बढ़ी है, रिश्ते बनाने की जल्दी, इंप्रेशन देने की जल्दी, कुछ चाहने की जल्दी, कुछ पाने की जल्दी, कोई जल्दी नहीं है। ये एक अपने साथ एक किया हुआ वादा है। ये जितने लोग हम प्रेयर्स करते हैं, जितने लोग हम अपने पैसे कमाते हैं, जितने लोग हम रिश्ते बनाते हैं, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, ये सारे का सारा आउटकम है उसका। जब तक बेसिक ब्रेन के अंदर सिस्टम ठीक नहीं होगा, हमारे सारे बनाए हुए पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हमारे सारे इमोशंस और रिश्ते जो हैं वो सब ज़ाया हो जाते हैं। मेरे सामने सब के हो रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़े किया हुआ काम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि उसकी आपकी ज़ात के ऊपर मैनिफेस्टेशन नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी अचीवमेंट, कोई भी ऐसा लॉरल्स आप अचीव कर लें जिसका आपकी ज़ात और आपकी ऑथेंटिसिटी पर असर नहीं पड़ रहा, वो ज़ाया है। एक दिन वो आपको याद ही नहीं होता। जब आप परेशान होते हैं आपको याद ही नहीं होता मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, मैं कितना बड़ा, मेरी सोच है, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैंने क्या किया, बिकॉज आपने उस तरह ज़िंदगी में सोच कर हमने ज़िंदगी जी ही नहीं। तो जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, कि एक जगह पर रुक के पीछे आप एनालाइज करते हैं क्या क्या गड़बड़ हो गई है, अब इस गड़बड़ को कैसे कैसे इसको ठीक करना है, और आगे अवेयरनेस के साथ, मसला है अवेयर होने का। जो हमने जो भी ज़िंदगी में अब तक किया है, बचपन में, जवानी में, लोगों की देखा देखी किया, वो सारी कंडीशनिंग थी, उसमें हमने कोई कमाल किया ही नहीं। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं, जो सक्सेस के स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं वो सब इसलिए बनाए हैं कि दूसरे हमको ऐसे देखना चाहते हैं, हमें भी लगता है कि शायद ये करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं ठीक होंगी। बिकॉज हर आदमी डिफरेंट है, उसके ब्रेन के केमिकल्स डिफरेंट है, उसके जीन्स डिफरेंट है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। तो एक तरह की ज़िंदगी जो इन्होंने बना के हमें दे दी है कि जी इसके हिसाब से हो, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। खुद को देख कर, सोच कर, समझ कर, अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को सामने रख कर, फिर आप एक ज़िंदगी बनाएंगे जो आप बनाएंगे। और उस ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी और इसकी जो पूरी गेम है ये सारी आपने खुद बनाई है, फिर ना आप इसमें, आपको कोई टेंशन होगी, ना स्ट्रेस होगा, ना जज्बात इस तरह आएंगे कि हम बात ही ना कर पाएँ और परेशान हो जाएँ और गुस्से भी में हम फटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये वाली ज़िंदगी की गेम आपने खुद बनाई होगी अपने आप को सामने रख के। तो उसके बाद ये सारे मसाइल जो पिछली गेम हमने 30-35-40 साल खेली है वो गेम हमारे लिए थी नहीं। तो अब आप बिल्कुल एक नई गेम बनाने लगे हैं जो आपकी ज़िंदगी की है, जो आप जिसके स्टैंडर्ड सेट करेंगे, इसमें क्या किसी को मिलना है, क्या नहीं मिलना, आपको क्या मिलना है, आपको क्या नहीं मिलना। जब ये सारे रूल्स ऑफ द गेम ही आपके होंगे तो उसमें तो आप नहीं हार सकते। समझ आइए बात। जब तक ये नहीं बनाएंगे, और हर आदमी को रब ने ये अलाउड किया हुआ है कि वो अपनी मर्जी की चॉइसेस करे, उसको फ्री विल दी हुई है, लेकिन इससे पहले उसने सोचना है, समझना है, बाकी लोगों को पीछे हटकर, प्रेशर से हटके, अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करके, अपने आप को फिगर आउट करके, जब आप ये वाली गेम बनाएंगे जो आपने डिज़ाइन की है, तो इस गेम में आपको हराना या मारना या परेशान करना या तकलीफ देना नामुमकिन हो जाएगा लोगों के लिए। इतनी सी काम की बात समझें आप।
0: हाँ जी सर।
1: इस, आप बताएं, ये जो मैंने बात की इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग आई है, इससे क्या होगा? अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
0: सर, इससे रिलेटेड दिमाग में अभी जो बात आ रही है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा सेल्फिश फील हो रहा है, लाइक आई एम पुटिंग आउट माई प्रॉब्लम ऑन समवन एंड दे आर गिविंग मी आंसर्स। आई अंडरस्टैंड वी इससे कई लोगों का फायदा हो जाएगा, बिकॉज दे आर सेइंग द सेम वे, बट मेरा जो एज वी स्पोक अबाउट मेंटल कंडीशनिंग फॉर इयर्स, वो जो हो चुकी है, आस्किंग फॉर हेल्प इज हैज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड आई हैव लर्नड एंड ऑब्जर्व्ड माई सेल्फ दैट विदाउट आस्किंग आई वोंट बी एबल टू थ्राइव, आई विल बी इन द सेम सिचुएशन ऑल ओवर अगेन, एंड आई हैव टू सबमिट I have to submit that I cannot do it myself. It's okay asking for help. But ये जो struggle जो अभी चल रहा है, अभी पिछले कई सालों से चल रहा है, to ask for help and then जो अंदर वाला जो दो दूसरी feeling है कि जो जो हमें सिखाया गया है या तुम मर्द है तो खुद नहीं कर सकता, इतनी सी बात नहीं खुद figure की।
1: अच्छा, जिसने ना जिसने हमको ये बात बताई थी ना, तू मर्द है तू नहीं कर सकता, वो they died miserably, ठीक है, उनके दादे परदादे everyone was miserable। पहली बात तो ये समझें, आप अपने अबाव अजदाद में से किसी की ज़िंदगी भी नहीं लेना चाहेंगे, वो बड़ी टफ ज़िंदगी थी और इस ज़माने में वो वैसे ही फिट नहीं आती, ठीक है। आपने सिंपल थोड़ा सा सोचने का तरीका, मैं आपको एंगल बताता हूँ जिस एंगल के ऊपर आपने सोचना शुरू करना है, फिर ये मसला ही नहीं रहेगा। पहली बात, यू आर नॉट कमिंग अप हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म आस्किंग फॉर हेल्प, यही तो गड़बड़ है जो हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ। यू आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ वे, आप एक तरीके से एक चीज़ को बयान कर रहे हो जो कि 99% लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके बारे में बात करें, पहली बात। दूसरी बात, हर बंदा, हर आपका जो मसला है ना, जो भी मसला आपका या किसी का भी है, वही मसाइल हैं, वही 10-15 मसाइल हैं पूरी इंसानियत के साथ, करोड़ों देशियों के साथ वही मसले हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता और उसके बारे में कोई डिस्कशंस नहीं कर रहा। जब तक आप डिस्कस नहीं, आप पॉइंट लाते हो, आपको आगे से एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बयान करते हैं, तो आप बेसिकली हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की जो वो सामने नहीं ला रहे, वो आप सामने ले आए। आप नहीं भी बताएंगे तो मैं तो फिर भी सामने ले ही आऊँगा, ठीक, लेकिन हर बात मेरे सामने लाने से और किसी और बंदे के सामने लाने से मुख्तलिफ़ लोगों को चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से हिट करती हैं। तो एक्चुअल में यू आर नॉट सीकिंग एनी हेल्प, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक चीज़ के बारे में आकर फोरम पे बात करते हैं कि ऐसे फील होता है, और जो आपको होता है ना वैसे 99% लोगों को होता है, लेकिन वो इस तरह कह नहीं पाते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो पहली बात है, आप इसको कॉन्ट्रीब्यूशन में डालें बजाय हेल्प के। जब कॉन्ट्रीब्यूशन में आप कोई चीज़ डालते हैं ना, तो आपको उसके बदले कुछ मिलता है, ये तो पता है ना आपको। आप ज़कात देते हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, ठीक। आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर डालते हैं, ये तो वो वाली बात है कि मैंने 40 साल की ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, मैंने सब कुछ इस शो में बोल दिया, बता दिया आपके ख्याल से, ठीक है, तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, आप बताएं मुझे क्या। आप फ़र्ज़ करें, आप आज़ाद जी हैं इस वक्त, मेरा वाला काम आप करते हैं, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो आप आके इस शो पर कर रहे हैं, मैं ये काम 18 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं, आप जो सुनते हैं, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ और मुझे क्या मिल रहा है ये करने से, और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं, जो भी क्या इमेज है आपके दिमाग में कि मुझे क्या मिला उससे।
0: सर, मुझे नहीं लगता आप लोगों की बिल्कुल भी परवाह करते हैं लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यही काम तो हम सब करना चाहते हैं। और आपको जो सुकून मिलता है ना, अंदर से सुकून मिलता है, उसी के पीछे मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं भी भाग रहा हूँ। मुझे लगता है आपको अंदर ये सब करके अंदरूनी सुकून बहुत मिलता है आपको। आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो, आप यू डोंट थिंक दैट दिस क्या चल क्या रहा है, आप कहते हैं कि दिमाग यू कैन फिगर थिंग्स आउट, यू फील गुड अबाउट एवरीथिंग।
1: अब आपने समझ नहीं, आप जो आप देखे, मैं आपसे भी जो आपको लगता है ना कि आपको वीक थे या आपको लगता है कि आपको चीज हैंडल नहीं कर पाए, मैं अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों को आज तक मिला हूँ, मैं बचपन में उन तमाम लोगों से ज़्यादा वीक आदमी था, तमाम लोगों से ज़्यादा वीक था, मेंटली वीक था, फिजिकली वीक था, स्पिरिचुअली वीक था, मैं बहुत वीक आदमी था, बेइंतहा वीक।
3: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Learning the meaning of prayer transforms a daily routine into a real conversation with God. Understanding your words brings instant focus and true peace. Don't just repeat the lines. Know them and change your experience today. Thanks for tuning in and keep listening for more. Only on Inspire FM.
6: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just

0: Luton to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
1: Islam is not only just claiming this I'm Muslim, it is leading the life in Islamic way. In Surah Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala said, by time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds and advise each other to truth, to haq, to Islam, and advise each other to patience. Without these duties, this Islam is not going to help us. We don't appreciate Allah's favor upon us. We come to pray, maybe we follow Islam. When we go to our business, we may cheat people, we become dishonest. This is not Islam. Islam should be accepted, adopted in all the sphere of the life, a complete code of the life.
2: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
3: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
4: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
3: This is Inspire FM.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
6: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
7: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
8: फौज में जब तक गया मैं तब भी काफ़ी वीक था मैं जब सीनियर में जो भी मैं चीज़ें अचीव करता था उसके बावजूद मैं बहुत वीक आदमी था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मैं वीक था इन्वायरमेंटली जो चीज़ें मुझको असर कर रही थी और जिस सोसाइटी में बड़ा हो रहा था जिस घर में मैं बड़ा हो रहा था वो हर चीज़ उन पूरा माशरा एक तरफ सोच रहा था और मैं एक और तरफ सोच रहा था जिसकी वजह से मैं डर गया घबरा गया और मुझे लगता था कि मैं कैसे सही हो सकता हूँ ये सब के सब कैसे गलत हो सकते हैं 100-100 साल की इनकी ज़िंदगियाँ हैं बट दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ इनके फाइनेंसेस बेहतर नहीं हो रहे इनकी इमोशनल लाइफ बेहतर नहीं हो रही इनकी शादियां मतलब कुत खाने खुले हुए हैं इनके बच्चे इनके काबू में नहीं है जिंदगी गोलियां मर रहे हैं लोग एक दूसरे को मार रहे हैं जहालत की ये सारी फजूल की ज़िंदगी चीज़ें जी रहे हैं तो उसने मुझे क्या किया अपने अंदर बंद कर दिया और उस घुटन में मेरी स्टैमरिंग भी शुरू हो गई मेरी हर चीज़ मुझे बीमार रहना शुरू हो गया मैं फिज़िकली मेंटली हर चीज़ के साथ साथ तो मैं बहुत वीक हो गया तो आपने ये बात समझनी है कि फिर मैंने जब दुनिया के साथ चलने की कोशिश क्योंकि मैं वीक था तो मैंने कहा यार ये तो खा जाएंगे हमको तो मैंने कहा चलो इनके साथ चलते हैं ये हो सकता है सही कह रहे हो अंदर से हालांकि बड़ी आवाज़ आती थी कि नहीं ये सब गलत है ये कोई ठीक नहीं हो रहा लेकिन मैंने फिर भी 28-30 साल तक मैंने लोगों के तरीके से करने की कोशिश की जो घर में सीखा समझा था वो करने की कोशिश की जो इर्द गिर्द सोसाइटी में चल रहा था वो करने की कोशिश की मैं जिस इंस्टीट्यूशन में जिस मैंने बिजनेस में गया जॉब में गया मैं उसमें करने की मैंने कोशिश की बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज टू थिंग्स वन दे वर ऑल रॉन्ग एंड सेकेंडली आई वॉज मिजरेबल एंड आई वॉज मिजरेबल टू एन एक्सटेंट वेयर मैं इनकपैसिटेटिंग हद तक ख़राब हो गया कि मेरे से काम ही कुछ नहीं होता था ना मैं सोच पाता था ना मैं कुछ कर पाता था अपेरेंटली हर चीज़ मेरी परफेक्ट थी लोग मुझे मेरी तरह बनना चाहते थे और मेरी मिसालें देते थे और वो बस कहते थे कि बंदा ऐसा होना चाहिए लेकिन खुद बंदा अंदर से वीक खोखला हो गया हॉलो तो फिर मुझे किताब पढ़

0: سے ایک رات کو جب مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع تو میں نے جس دن قرآن پہلی دفعہ کھولا اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ سمجھنے لگا پڑھنے لگا تو میں نے رب کی جب باتیں سنی ایگزیکٹ وہ کتاب میں کیا کہتا ہے اور پھر میں نے دنیا کی جو 30 سال کی زندگی میں نے گزاری تھی جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے لگا کہ دونوں کے آپ کے بیچ میں ٹوٹلی کوئی بھی ایک کنٹراسٹ تھا بالکل کوئی بھی چیز آپس میں نہیں ملتی تھی جو بھی رب کہہ رہا تھا ہماری ساری سوسائٹی پورا گھر پوری فیملی سب کچھ ہم اس کے خلاف تھے تو جب مجھے سمجھ آئی کہ یہ اور جو یہ 30 سال میں جنہوں نے مجھے کیا انہوں نے مجھے ایک ویک ذہنی طور پہ کمزور اور ہر قسم کا جو کہ اس کے نقصان ہوتے تھے مجھے وہ آدمی بنا دیا اور جب میں دوسری سائڈ پہ لے کے چلا ان چیزوں کو تو اگر میں شروع میں تو میں سٹرگل کر رہا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اس کی بڑی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہر چیز کی جیسے آج کا کلپ بھی تھا انلائٹنمنٹ کی یا علم کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لیکن میں وہ قیمت 100 دفعہ دینے کو تیار ہوں مجھے ایک اور زندگی بھی ملتی ہے تو میں ڈائریکٹ اسی زندگی میں وہی کرنے کی کوشش کروں گا جو میں ابھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک اور بات یہ بات کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے آپ سمجھیں میرے مجھے جس پٹھان کلچر میں کنڈیشن کیا گیا ہے نا میرے لیے میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میری فیملی میرے دوست یہ لوگ اور مجھے انسانوں کی بہت زیادہ پرواہ ہے ایک حد سے زیادہ پرواہ ہے جو کہ ان کو خود بھی نہیں ہے ظالموں کو تو مجھے ان سے بھی زیادہ ان کی پرواہ ہے لیکن یہ 25, 30, 32 سال ان کی پرواہ کرنے کر کے میں کچھ نہیں کر پایا پھر مجھے سمجھ آیا کہ اگر مجھے ان کی ایکچوئل میں پرواہ ہے تو میں ان کو وہ بتاؤں میں اگر پیسے کماتا ہوں تو میں ان کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جس سے وہ پیسے کمائیں میں نے ہیلتھ کمائی تو میں نے ان کو وہ بتایا کہ وہ بھی ہیلتھ کمائیں میں نے اچھی چیزیں زندگی میں جو کمال دیکھے اور اتنی مجھے محبتیں اس سے ملی پھر میں نے ان کو وہ بتایا کہ جو ان کو بھی ملیں تو مجھے لوگوں کی بے انتہا پرواہ ہے اتنی زیادہ کہ مجھے میں شاید میں اگر اپنے لیے کوئی چیز خریدنا جاتا ہوں نا میں نے آج تک کبھی بارگیننگ نہیں کی لیکن میں جب کسی کے ساتھ جاتا ہوں میں اس کو بیسٹ ڈیل دلانے کی کوشش کرتا ہوں میں جب بھی میرے ارد گرد کوئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ خوش رہیں وہ سکون میں رہیں ان کو جو چاہیے وہ مل جائے مجھے اپنی بالکل پرواہ نہیں ہوتی تو اور میں نے زندگی میں جو کیا میں آرمی میں گیا کسی کی وجہ سے گیا میں نے فلم کی میں نے کسی کی وجہ سے کی میں نے آرمی چھوڑی کسی کی وجہ سے چھوڑی میں نے ٹریول کیا جہاں جہاں میں زندگی میں کام کرتا ہوں میں نے سب کسی کے لیے کیا میں ابھی فلم جو کرتا ہوں وہ بھی میں نے کسی کے لیے میں خود کے لیے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میں خود کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا میں سکون کرنا چاہتا ہوں میں آرام کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سب زندگی میں دوسروں کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے لوگ بے انتہا امپورٹنٹ ہیں لیکن جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو کیا میں ان کی پرواہ کروں میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ ان کو کیا غلط اور صحیح لگ رہا ہے میں اس بات کی پرواہ کرنے لگا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور ان کے لیے کیا صحیح ہے اور میرے لیے کیا صحیح ہے اور ہم دونوں کے رشتے کے لیے کیا صحیح ہے جب یہ پتہ لگ جاتا ہے تو پھر لوگوں کی رونتی بوتھیاں اور ان کو نہیں پتہ ایک آدمی غلط چیز کھانا چاہتا ہے غلط کام کرنا چاہتا ہے اس راستے میں وہ مارا جائے گا ذہنی طور پہ برباد ہو جائے گا تو میں اس کے وہ چیز کرنے کے بجائے اس سے وہ کام کرتا کراتا اور اس کو سیدھا رکھتا ہوں کہ وہ کر لے جس میں اس کی بھلائی ہے اور اگر وہ ایک حد تک نہیں رکتا تو پھر وہ اپنا کر لے جو اس نے کرنا ہے اور پھر اس کی جو بھی قیمت اور سزا ہے وہ اس کو اٹھانی پڑے گی مجھے نہیں تو جب آپ یہ جان جائیں گے تو یہ جس طرح میں نے پورا پرسپیکٹو آپ کو سمجھایا ہے اس اینگل سے آپ نے سوچنے کی کوشش کی
1: سر میرا کہنے کا مقصد مطلب یہی تھا جب میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے پرواہ مجھے بھی فیملی کی ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ہے پرواہ مجھے بھی جو میرے آس پاس ایسے ہی ہے بٹ کتنا بندہ سمجھائے جو آپ نے کہا صحیح اور غلط ابھی میں نے یہی کرنا شروع کیا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ صحیح ہے میں اس کو کر دوں گا اور اس کے بعد انہوں نے لینا ہے تو یہ لے لیں گے اگر نہیں لینا ہے تو یہ نہیں لیں گے
0: بس حق ہے ان کا
1: ہاں جی
0: اور دوسری بات آپ نے نا آپ نے ان سے باہر ان کی زندگی آپ کی زندگی نہیں ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ نا وہ اوور ریسپانسیبل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں مارے جاتے ہیں اور اپنے لیے دکھ اور تکلیف بنا لیتے ہیں کسی بھی آدمی کو جو ذمہ دار ہے جو بہتری کرنا اور جاننا چاہتا ہے میں سخت خلاف ہوں اس آدمی کو ٹارچر کرنے کی کوئی بھی کرتا ہے میں اس کو کبھی نہیں معاف کرتا کہ ایک آدمی آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں ایک آدمی آپ کو تھوڑا سا دیتا ہے اور آپ اسے اور مانگنے کی کوشش کرتے ہیں ایک آدمی آپ کے ساتھ نائس ہوتا ہے کائنڈ ہوتا ہے آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں لیچ کی طرح مجھے ایسے کسی بندے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہر بندہ اپنی زندگی جیے گا وہ جہاں پھنسے گا جہاں اس کو مسئلہ تکلیف ہوگی وہ مجھ سے یا کسی کو میں جانتا ہوں تو اس کو میں ریفر کروں گا اس کو ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد وہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کرے گا دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ از If they are not contributing to what I am trying to do for them and for myself and for others, I don't need them or I limit my interaction with them. And, you know, اور جو بھی reciprocal جو چیزیں مجھے ان سے کرنی ہیں میں اس کے حساب سے نہیں کروں گا جس کا جتنا کنٹریبیوشن ہے چاہے وہ میرا بلڈ ریلیشن ہے چاہے وہ میرے فرینڈز ہیں چاہے میرے پارٹنرز ہیں چاہے کوئی بھی بندہ ہے اگر وہ میرے کانسٹیٹیوشن کے ہی خلاف ہے तो मैं उसके साथ नहीं चल सकूंगा लंबा, थोड़ा थोड़ा चल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं चल सकता, इतनी सी बात है। चाहे वो जो मर्जी डीलें लेके आ जाएं, कुछ भी वो कहें, चाहे सोसाइटी कुछ कहती है, चाहे लॉ कुछ कहता है, जो भी होता है लॉ पे, मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, वो लॉ वगैरह का जब कुछ मुझे कहते हैं कि जी हम लॉ के थ्रू ये करेंगे, मैं कहूँगा सारा कुछ, सारा आप ही ले लो, ले जाओ सारा कुछ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लॉ से खेलता रहूँ मैं। समझ, आप लॉ के पास किस लिए जाते हैं कि जो आपको इंसाफ से फैसला करें ना, कि आधा आधा कर देंगे या 20-25 कर देंगे या ये बात ऐसे हुई थी। मैं कहता हूँ नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, ये पकड़ो और निकलो सारे का सारा लेके। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, मुझको क्वालिटी की ज़िंदगी जी कर कुछ चीज़ों को फिगर आउट करना है और कोई चीज़ क्रिएट करनी है। अगर मेरे रिश्ते कमाल नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे रिश्ते और मैं जो सोचता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी रब ने मुझे दी है, उस मेहरबानी मेरे पे इतनी की है कि मैं इसको कमाल का एक नमूना बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना बनाऊँ। तो अगर आप इनसिक्योरिटीज़, कॉम्प्लेक्सेस और दुनिया के डर से वो मेरे साथ एक चीज़ रखना चाहते हैं, मुझे वो खेल नहीं खेलना, क्योंकि बहुत खेल लिया और बहुत लोगों ने खेल लिया ये खेल, ये रिजल्ट हमको नहीं चाहिए। इससे अच्छा हम एक्सरसाइज कर लें, इससे अच्छा मूवी देख लूँ मैं, उससे अच्छा मैं लोगों से प्यार मोहब्बत की बात करके या यू नो शो कर लूँ मैं, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय इसके कि जो भी वो कहते हैं। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा जो कि आपके लिए इख्तियार में आपके नहीं है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं लोग, उनकी फ्री विल, आपको कंफर्टेबल होना है इसके साथ कि भाई मैं जितना कर सकता था मैंने किया, आई हैव टू लेट गो एंड देन डोंट। अब थोड़े से अपने आप को स्पेस दें, और क्योंकि आप अपने सामने होता हुआ देखेंगे तो वो बार बार ट्रिगर करेगा आपको, तो लेट देम बी, लेट देम लर्न देयर ओन लेसन, और उसके बाद अगर आपके पास आते हैं और ठीक होने की कोशिश करते हैं तो आप वहीं से शुरू कर लें।
1: जी सर, इसी बातों से ना एक मेरे दिमाग में अभी जो चल रहा था, जो where I have problem letting it go, और उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। एक सिंपल चीज थी, जैसे जो मेरी इंडस्ट्री है, the way I work, we help people, you know, road services, तो साल में हम एक बार ट्रक सारे ट्रक्स की चेकिंग करते हैं। सो वी नीडेड अ ड्राइवर लाइक यू नो टू गो इन देयर, देन वी पुट द ट्रक ऑन द होइस्ट सो इट गोज अप। तो एक उसने मुझसे पूछा, कैन आई गो? आई सेड नो, वी नीड यू हियर बिकॉज दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। इज लाइक वो बंदा थोड़ा जिस टाइप की मेंटेलिटी से मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो मुझे हिट करती है। उसका भाई आप नहीं जा सकते, आपको क्या वीजा लगता है? एंड आई डिडंट हैव एन आंसर फॉर दैट मोमेंट, और मुझे ये बात पता नहीं क्यों मेरे जहन से जा नहीं रही, लाइक दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ये सारे बंदे ऐसे करते हैं। लेकिन ये बंदे किसी चीज को समझने की बजाय, लाइक दे हैव आंसर फॉर एवरीथिंग एंड दे मोस्ट पीपल इवन इंक्लूडिंग फैमिली दे से समथिंग लाइक दैट विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और मुझे इस बात से रियलाइजेशन हुई, व्हेन आई एम नॉट एबल टू फिनिश व्हाट आई हैव टू से, इट बॉदर्स मी फॉर डेज।
0: अच्छा हीरा सिंह, मुझे एक बात बताएं, दो चीज़ें इसमें शुरू आ रही है, ठीक है, दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। पहली बात, मुझे सच सच एक क्लियर बात बताएं, फर्ज कर आपके पास पेट्स हैं?
1: नहीं सर।
0: कभी पेट रखा है?
1: छोटे होते घर में था, अभी या नहीं।
0: अच्छा, अभी मेरी गौर से बात सुनिएगा और उसको प्रैक्टिकली जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे ही सोचें आप, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सोचें। फर्ज करें आपके आपने बिल्ली रखी होती, उसको आप खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके साथ आप लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बिल्ली कोई ऐसी हरकत करती जो आपको बहुत बुरी लगती, ठीक? अब आप दूसरी तरफ इंसान के साथ आ जाएं, आप उसको ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं उसको ना, जितने तरीके से जो आप समझे उसके हिसाब से उसके साथ डील करते हैं, फिर वो इंसान आपको कुछ ऐसी बात कह देता है कि जो आपको लग जाती है, चुभ जाती है, या कोई ऐसी हरकत कर देता है जो आपको बहुत बुरी लगी है, आप क्या बिल्ली के साथ भी वही रिएक्शन देंगे जो आप किसी बंदे के साथ दे रहे हैं?
1: Obviously not, sir.
0: तो इसमें आपने, मैं पहले दिन से जब से आप शो सुन रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम में से बहुत सारे इंसान क्या हैं? हैवानी हालत में होता है। बिल्ली आपको कैसे देख रही है या कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या आपको रिएक्शन देना चाहिए उसका? नहीं,
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो इंसान भी इस तरह के होते हैं जो कि एब्रप्टली कुछ भी कह देते हैं या दे हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग और उसको गलत भी होते हैं तो नहीं मानते, आपने ये उनके साथ सिंपथी होती है कि ये भी हैवानी हालत, एक बात। दूसरी बात है, पठानों में और सिखों में, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ ताकि लोगों को, क्योंकि जिस तरह कल्चर होता है, जिस तरह हमें बड़ा किया जाता है और जिस तरह का रख रखाव और फैमिली और चीज़ें होती हैं, हम लोगों को कुछ चीज़ें बहुत बुरी लग जाती हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट का इशू होता है हमारे साथ। तो किसी इस किस्म का कोई भी जुमला कोई बोले कि भाई तुम्हें इसका वीज़ा लगता है, तो ये उसने सिर्फ अपने तरीके से एक जवाब दिया है। लोगों को बातें बड़ी करनी आती हैं तो उसको वह एक बंदा है जो बातूनी है उसने एक बात दी की है, लेकिन हम और आप स्पेशली ये दो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये इनकी ट्रेनिंग का, इसका खून की वजह से नहीं कह रहा मैं, ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि हमारे लिए ये बदतमीजी है कि नहीं?
1: बिल्कुल
0: बदतमीजी। जब आप जैसे ही उसको आप बदतमीजी के कंपार्टमेंट में डालते हैं तो सरदार जी का जो दिमाग है ना वो बदतमीजी का रिएक्शन देता है, क्लियर? तो उस कंपार्टमेंट में डालने के बजाय इसको जहालत के कंपार्टमेंट में डालना है, इसको जानवर वाले कंपार्टमेंट में डालना है कि ही डज नॉट, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था फॉरगिव देम दो दे नो नॉट, इनको माफ करें क्योंकि ये नहीं जानते। तो वो लोग जो नहीं जानते, जो कि आपके समझाने बताने की, आई बिकम मोर नाइसर टू दीज पीपल जब मैं किसी के साथ काम करता हूँ या मैं, और जो बहुत करीब है उनके लिए मैं सख्त हो जाता हूँ इन बातों पे, अगर वो ऐसी कोई बोंगियाँ मारें आगे से फजूल बात कोई करें उसमें मैं सख्ती करता हूँ क्योंकि वो बहुत करीबी लोग हैं और वो पूरा सिस्टम संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं या रिश्ते संभालते हैं, उनको आप यू कॉन्ट अफोर्ड डम पीपल अराउंड यू। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो सेकेंड थर्ड टीयर पे होते हैं, ऐसे किसी भी बंदे की बात को सीरियस नहीं लेना, बल्कि और नाइस होकर आपने सिर्फ उनको एक लुक करानी है और उनको थोड़ा सा फर्म होकर वो बात दोबारा एक्सप्लेन करनी है, और उसमें कभी आप हल्का सा लाइट जेंटल तरीका भी डाल सकते हैं और कभी फर्म तरीका भी डाल सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लेंगे तो ये जो ओवर सेंसिटिविटीज़ होती है ना, कई चीज़ें उस तरह कही नहीं जाती। जब फौज में हम होते थे कोई ऑफिसर को उल्टी सीधी बात कर देता था तो सीनियर को बहुत बुरी लग जाती थी, तो फिर जो दरमियान में सीनियर होता था ना वो जाके उस सीनियर से कहता था सर माफ़ कर दें, अच्छा अफसर है, बस अंग्रेज़ी की गलती हो जाती है उस, यानी इंग्लिश में उसने जिस तरह कहा है इट जस्ट केम आउट यू नो इन अ बैड वे में निकल आई ये बात, वरना ही डिडंट मीन दैट, सो इंग्लिश की गलती मैम उसको कहते सर अंग्रेज़ी की गलती होगी, बेवकूफ़ को नहीं पता था, छोड़ दे माफ़ कर दे। तो बिल्कुल इसी तरह आपने भी बीच में उनको थोड़ा सा लोगों को लेवरेज देना है और उस तरह उनको लीवे देंगे तो ज़िंदगी आसान होगी, वरना अब आपने कहा ना कि मैं इस चीज़ से मेरा दिमाग से चीज़ निकल नहीं रही है, ये ज़िंदगी की इतनी ज़बरदस्त जो ज़िंदगी मिली हुई है, जो फैमिली मिली हुई है, जो सोचें मिली हुई हैं, जिस मुल्क में आप रहते हो उधर जो आपके यू नो माहौल मिला हुआ है, इस जिसके ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए लोग तरस जाते हैं, फैमिली के लिए लोग तरस जाते हैं, इज्जत प्यार मोहब्बत के लिए लोग तरस जाते हैं, आपको वो सब मिला हुआ है, उसके सदके इन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना है आपने, और ये कोई भी चीज़ें नहीं, आपको इसको बहुत लाइट लेना होगा, वरना आपकी पार्टी जो चल रही है ज़िंदगी में और बहुत बेहतर आगे आप कर सकते हैं उसके ऊपर असर आएगा, क्लियर?
1: सर यही मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, ये मैं कौन सी बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ आई वाज बिफोर, और अभी अभी जैसे जैसे ये सब आपके आपके शो के थ्रू और कुछ अदर थिंग्स आई हैव कम अक्रॉस, आई एम ट्राइंग टू एनलाइटन माइसेल्फ मोर दैट दीस आर द थिंग्स दे आर जस्ट होल्डिंग मी, दे आर दिस एंकर्स, आई एम ट्राइंग टू लेट देम गो, एंड एज यू सेड बिफोर लाइक यू नो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर बिकॉज दिस इज व्हाट The problem I'm facing,
0: आप मुझे ये बताएं,
1: and I need it.
0: हाँ, इस सारी बात में पहले तो enlightenment में एक बात आप enlightened हों पहले, वो enlightened ये भी जितनी आपने मुझे दो मुख्तलिफ सिचुएशन और प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसमें कहाँ आपने हेल्प कहाँ सीख की है मेरी? आपने मुझे एक सिचुएशन बताई है और मैंने आपको बताया ब्रेन ऐसे काम करता है, सोसाइटी ऐसे काम करती है, कंडीशनिंग ऐसे काम करती है, और उसके बाद ये चीज़ इस तरह इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बेहतर हो। इसमें हेल्प कहाँ आपने सीख की जो आप अक्सर कहते रहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है, ये भी हमारी कंडीशनिंग है, पठान होने की वजह से, सिख होने की वजह से, मर्द होने की वजह से, कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जा सकता, और मर्द बेचारा इतना ही मासूम है जितनी औरतें हैं, ब्रेन जो होता है ना उसको नहीं पता आप मर्द हैं या औरत हैं, ये लोगों ने कंडीशन हमको कर दिया है, तो इस कंडीशनिंग से हमने बाहर निकलना है। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, ना किसी को किसी की मदद की ज़रूरत है, हम लोग सिर्फ चीज़ों को डिस्कस करके, ये जो भी आपने कहा ना होल्डिंग ऑन टू स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड दे कीप ऑन बॉदरिंग यू एंड यू मिस द बिगर पिक्चर, ये आपका नहीं मेरा, हज़ारों का, हर बंदे का जो इसको सुनेगा किसी भी जगह पर, सबका ये मसला है। तो आप सिर्फ उसको हाईलाइट करते हैं, मैं भी अपनी चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ, मुझे जो लोग मिलते हैं मैं उनकी चीज़ों को भी हाईलाइट करता हूँ, कुछ चीज़ें आप अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, सो वी जस्ट हम प्रॉब्लम को हाईलाइट करके उसके इर्द गिर्द एक सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, और एक्चुअल में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसा ही निकलेगा, और आखिर में अगर आप इनको कंपार्टमेंटलाइज करके आहिस्ता आहिस्ता, कुल 10 से 15 सेकेंड होते हैं जो रिएक्शन जिसमें हमारा निकलता है, वो 15 सेकेंड मुँह बंद रखना है, वो 15 सेकेंड मुंह नहीं बंद रख सकते तो वहाँ से निकल जाना है, वो कुछ और करने की कोशिश करनी है, जस्ट ये इंस्टिंक्टिव जो एकदम रिएक्शन हम देने की कोशिश करते हैं इससे बचना है आपको। मैं खुद बचने की कोशिश करता हूँ, लोगों से अवॉइड करता हूँ, फ़ोन कॉल से अवॉइड करता हूँ, वो ब्लड रिलेशन से अवॉइड करता हूँ, जब तक मैं उस मूड में और सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं इस किस्म की स्टुपिडिटी ले सकूं और लाइट रख सकूं चीज़ों को। तो मेरा भी यही स्ट्रगल है जो आपकी स्ट्रगल है, तो कोई ना मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ना मैं आपको कोई ऐसा कोई एहसान कर रहा हूं। तो आप इन बातों से बाहर निकलेंगे, आप आते जाते रहेंगे इस तरह और गप लगाते रहेंगे, तो मैं यकीन से जो आपका काम सालों में होना है ना, वो मंथ्स में निकल आएगा और आप उस आराम से फिर आप सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देंगे।
1: देखिए अभी आपने ये बात मुझे 15 मिनट पहले भी बोली थी, लेकिन अगेन वही मेंटल कंडीशनिंग की बात आ गई। आई विल डेफिनेटली कीपिंग ट्राई टू कीप ट्वीकिंग माय माइंड दैट आई एम नॉट सीकिंग हेल्प, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। तो ये बात मुझे अपनी बार-बार करनी, बस
0: अभी मुझे जो भी आपको चीज बदर करेगी ना, मुझे जो चीज बदर करती है मैं उसको लिख लेता हूं, मैं कहता हूं कंटेंट है सीधा सीधा। आप जब कोई चीज़ बॉदर करती है तो आपको लगता है ये कोई प्रॉब्लम है, अब इसका मुझे मसला हल चाहिए, अब मैं उसके साथ फलां करूंगा, ये इससे बाहर निकलकर बिल्कुल लाइट रखें खुद को। मुझे जब कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती है, जब मुझे बॉदर करती है, मैं लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कमाल कौन, इसके बारे में बात करेंगे, इर्द गिर्द से लोग कहते हैं अच्छा इसका ये मतलब होता है, उनको भी ऐसा ही होता है, तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं भी सारी अपनी ही चीज़ों के बारे में और जो चीज़ मुझे लोग मिलते हैं उनसे जब मैं बातें करता हूँ तो पॉइंट्स बनते हैं और उसी से शो बनता है और उसी से ये नॉन स्टॉप हज़ारों घंटे बने। तो आपने इसको इस तरह से लेने की कोशिश करनी है और आपको एक दिन पता ही नहीं चलेगा, आप लाइटर एज फेदर हो जाएंगे। आपको खुद ब खुद, जिस तरह मैं चीज़ें करता हूँ ना, मैं जैसे गाड़ी भी ऐसे चलाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ब्रेकें ना लगानी पड़े, स्पीड इतनी होनी चाहिए, राइट लेफ्ट बिल्कुल सीमलेस तरीके से ज़िंदगी जीना, सीमलेस तरीके से रिश्ते बनाना और सीमलेस तरीके से हीलिंग करना। उसको बिग डील बना के अफरा तफरी मचाना और अगर गलती हो गई है या वही रिएक्शन दोबारा दे दिया तो अपने आप को मारना पीटना नहीं है जहनी तौर पे या फिजिकली, या कोई चीज़ उठा कर नहीं फेंकनी है, ओहो फिर वही स्टूपिडिटी होगी, फिर वही रिएक्शन होगी। अवॉइड करना है मुझे, इस बंदे से अवॉइड करना है, सिचुएशन से अवॉइड करना है, उसको लाइट लेना शुरू करें।
1: जी सर, मैंने भी कुछ चीजें अभी जब लिखने की बात आई तो मैं जब लिखता हूँ कभी कभी मैं खुद डर जाता हूँ, लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज सो पावरफुल और जो मैंने चीजें कुछ ऑब्जर्व करी हैं, जैसे मर्द और औरत की बात कर रहे थे, मैं खुद की एग्जांपल ही दे सकता हूँ। देन अगेन कुछ दिन पहले हमारा बच्चा ही वाज आउटसाइड इन द वॉकर, वो भाग रहा था, तो मैंने एक बार दिमाग में बात भी आई लाइक आई शुड पुट सैंडल्स ऑन हिम, बट फिर मैं भूल गया। तो वो भागते भागते उसके नाखून से खून बहने लगा और फिर जो मैंने अपने आप को पीटा है अंदर से,
0: यही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों पीटा, देखो ये तो मैं आप यू टू हार्ड, मैं कब से आपको, कितने सालों से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, एंड यू नॉट वर्किंग ऑन इट, यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, थिंग्स हैपन, नेक्स्ट टाइम आपको ये सोचना है उसके बजाय ओहो यार मुझे उस वक्त कर देना चाहिए था, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं देना, और अगली दफा जब ये करेगा और तो उसको आपने जो भी सैंडल्स जो भी आप कह रहे हो पहना देने, खत्म, इससे ज्यादा नहीं सोचना आपने। और ये अपने आप को बीट अप करना, आप उस बंदे को मार रहे हो जिसने जिंदगी में कोई काम करना है, उस जहन को मार रहे हो जिसने आगे कोई कुछ सोचने आया है, कोई फिगर आउट करना है, जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जो परेशानियों से निकलना चाहता है, जो मोर रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो बाकी लोगों को भी सीधे रास्ते पर लेके जाना चाहता है, वो अगर अपने आप को ही मारता पीटता रहेगा तो उसने आगे काम खोते तो सिर करना है।
1: वही बात, जब मैं अपने आप को मार पीट रहा था तभी मैं अपनी वाइफ को भी ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने उसको देखा, शी सिटिंग देयर काम एंड कलेक्टिवली, वो उसको भी देख रही है और मुझे हीरा इट्स ओके, वो मुझे बोल हीरा इट्स ओके, रिलैक्स।
0: ये कई मेरे दोस्त भी है ना, कई दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है उसके साथ में कि वॉक कभी हम कर रहे होते हैं तो कुत्ता कहीं से आता है वो छलांग मार देता है उसको, मैं कहता हूं भाई, और वो कहता है नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूं, कंफर्टेबल कहां हूं, छलांग मार के पैर मेरा कुचल रहे तुम तो वो, और ये कहते मानते भी नहीं होते ऐसे लोग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू काम योर नर्व्स डाउन, इट्स नॉट अ बिग डील, अनलेस कोई इतना बड़ा कोई काम हो जाए जो रिवर्सिबल नहीं है, और वो हो जाएगा क्योंकि अगर आप हर वक्त हाई अलर्ट पे रहते हो, हर छोटी चीज़ बिग डील होती है, तो आपके जो पार्टनर्स होते हैं ना, फैमिली के भी लोग पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस में भी पार्टनर्स होते हैं, जिंदगी में होते हैं, वो उनको ना वो भी बेचारे हाई अलर्ट पे रहते हैं और वो हर वक्त आपकी परेशानी लेके बैठे रहते हैं, हालांकि आप वो बनना चाहते हो कि जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
1: Exactly.
0: तो ये तो उल्टा चल रहा है ना साइकिल।
1: बिल्कुल उल्टा चल रहा है और इस बात का दुख बार बार अंदर अंदर खाए जाता है,
0: और दुख नहीं, यही तो मैं आपसे कहता हूं कि दुख नहीं करना है, उसको फिगर आउट करना है, उसको दुख नहीं लगाना, दुख ये लगा ओहो फिर वही स्टुपिडिटी, फिर वही बेवकूफी, चलो दोबारा से करते हैं।
1: हाँ जी, अभी मैंने दोबारा फिर करना ये शुरू किया है, लाइक अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट आई वेंट थ्रू और जो स्पेशली व्हाट आई फील इन द मोमेंट, क्योंकि अगेन जस्ट लाइक लास्ट टाइम आई सेड व्हेन यू सिटिंग कॉमली कलेक्टिवली यू नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग व्हाट आई शुड डू, हाउ आई एम सपोज्ड टू डू।
0: आपने एक बात याद रखनी है, मैं अभी काम की बात मुझे ज़हन में आ गई है, आप जिंदगी में कभी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना सकोगे, ना किसी मर्द से, ना औरत से, ना बच्चे से, अगर आपका बिहेवियर बाइपोलर टाइप है, एक आप बहुत अच्छे आदमी है, मज़े के आदमी है, कंफर्टेबल, और एकदम आप अप हो जाते हैं, एकदम अप और एकदम डाउन होना जो है ना, ये हमेशा ज़िंदगी में लोगों को आपसे रिश्ते बनाने से दूर रखेगा। आपके ट्रस्ट के ऊपर शक रहेगा और आप बाकी चीज़ों पर रहेगा कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आप एक चीज़ के बारे में 10 दफ़ा 20 दफ़ा बताते हैं, फिर आप गुस्सा कर रहे हैं या कुछ एक्टिव यू नो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, तो वो और बात होती है। लेकिन अगर आप फौरन बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी लॉजिक के एकदम बहुत बड़ा इशू बना दोगे और एकदम उसको नीचे लेके जाओगे, तो लोग आपके इर्द-गिर्द अनकंफर्टेबल और घबराए हुए रहेंगे और इस तरह वो कभी आपको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने एक्शंस को बिल्कुल ऐसे रफ अराउंड द एजेस हो रहा है काम, इसको स्मूथ करना है ताकि आप लोगों से टकराएं तो उनको कॉर्नर आपके कोने ना लगें, आपको रफ अराउंड दिया जाए बिल्कुल आपको, और मीनिंगफुल इतनी आप मेहनत करते हैं, इतने जज्बों से, प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती
1: हैं। है सर, रिएक्शन के टाइम पे वो सारी चीजें ऐसे उड़ जाती हैं जैसे वो स्टीम की तरह, हाँ भी कभी थी ही नहीं वहां पे।
0: बिल्कुल, तो इसका इसमें दुख नहीं लगाना है, इसमें लगाना है इसमें आप एक चीज में फेल हुए हो, बस उस पे जोर लगाना है कि यार ये क्यों मैं कर जाता हूँ, इतना काम मैंने किया था। अब देखो मैंने ना वादा किया था, मेरा ना कल तबीयत बहुत ख़राब थी, रात को मैं सोया भी नहीं, नाक बंद, सांस बंद, सब बुरे हालात थे, और अपनी मेडिसिन वगैरह भी लिया, मेरा दिमाग बिल्कुल सुबह काम नहीं कर रहा था, मैंने धूप भी लगाई, मैंने सारे काम कर लिए, चाय चाय भी पी ली, मैंने कहा किसी तरह मैं शो के काबिल हो जाऊँ। अगर मैंने मी टाइम में पिछले महीने में वादा ना किया होता मंडे के शो का, तो मैं आज स्किप कर जाता, लेकिन क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं मंडे और वेंसडे कंफर्म है, फ्राइडे अगर मुझे कभी भी चाहिए होगा अपने कामों के लिए, बिजनेस के लिए, यू नो लिखाई पढ़ाई के लिए, तो मैं वो ले लिया करूंगा, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो मैं जब आया हूं, नहाया धोया हूं, फ्रेशन अप होकर मैंने सारे काम कर लिए, मैं आया हूं और आगे काम एक हो रहा है, तो आपने जैसे ही मार खाएंगे, कुछ भी हटेंगे, आपने दोबारा वापस जाना है, समझ रहे हो? कंसिस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, कंसिस्टेंसी का, मैं एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी करने की कोशिश करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत डिसिप्लिन वाला हूँ और परमानेंट करता ही रहूँगा, मुझसे वो नहीं होता, लेकिन आई एम कंसिस्टेंट इन कमिंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। कोई बात नहीं, लेट हो गए, 4-5 दिन नहीं हो सकी, गड़बड़ हो गई, सेहत खराब होगी, कुछ भी, बट कम बैक टू इट, तो 2-3 हफ्ते लग गए, बट जस्ट कम बैक टू इट, कमिंग कंसिस्टेंटली, कमिंग बैक टू वट योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ वॉज इज द थिंग विच विल गेट यू वेयर यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दो हमें याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: Inspire FM. Call us 01582 481 822. Text us 0779 481 822.
1: गीत गाते आबशार, ये वादियां और दरिया और कोहसार, यही तो है इंस्पायर एफएम की बहार।

0: ये मेरी सबसे फेवरेट ताबीरात में से है, मुहावरों में से है कुरान के, अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, ये शुअरा के बारे में कहा है, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, सो तो शुअरा के आखिर में, शुअरा का लफ्ज वही है जो अरबी में है जो उर्दू में है, लेकिन उसमें एक फ़र्क जान लें, शुअरा शायर, उर्दू में भी शायर कहते हैं ना, शायर आता है मशअर से, मशअर अरबी में लफ्ज़ है मशअर, और शईरा और शेर, शेर अरबी में असल में कहते हैं जज्बात को, अशआर और मशायर जज्बात का लफ्ज़ है अरबी में, और शायर को शायर इसलिए कहा जाता है कि वो अपने अल्फाज के ज़रिए क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा होता है, जज्बात, और वो किस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता है अपने सुनने वालों में, उनके भी जज्बात, इसलिए उसको शायर कहा जाता है, असल में इसका इस लफ्ज़ का ताल्लुक जज्बात से है। तो खैर, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जब अल्लाह ताला शुअरा के बारे में बात करता है तो उसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जो लोग शेर पढ़ते हैं उनके बारे में बात हो रही है, बात ऐसे लोगों के बारे में हो रही है जो किसी भी तरीके से लोगों के जज्बात को बरगलाते हैं, जिनमें यह सलाहियत होती है कि वो लोगों को जज्बाती बना दें, वो भी एक तरह के शुअरा होते हैं। तो शुअरा का लफ्जी माना तो वाकई जो शेर पढ़ते हैं उनके बारे में, लेकिन इसका जो वाजिब जो उसका ज़्यादा वसी माना है, वो जो भी लोगों के जज्बात पर असर कर सकता है ना, उनका एक ग्रोह होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनको जो पहले ही गुमे हुए हैं ना, किसी राह की तलाश में है, वो उनके पीछे लग जाते हैं, जिसके पास पक्की हिदायत ना हो, पक्के गोल्स ना हो, पक्का उसकी ज़िंदगी में कोई हदफ ना हो, कोई नसबुल ऐन ना हो, तो फिर जो उसके जज्बात से खेल सकता है वो उसके पीछे लग जाता है। हो सकता है कोई रेडियो में किसी की पॉडकास्ट सुनता है, उसके गुस्से के जज्बात में उसको हाँ में हाँ मिलती है, वो उसकी बात सुनने लग जाता है, उसके पीछे वो उसका शायर है। कोई बहुत डिप्रेशन में है और वो गाने सुनता है, उस गाने में कैसे उसने मेरा दिल तोड़ा और क्या किया उसने साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू रहेगा, वो उसका अब ये मैं ये तो उसने ऐसे लिखा जैसे मेरे लिए लिखा था, ओहो हो हो ही इज़ माई फेवरेट, यू नो मेरे दिल की बात कह दी उसने। वो शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जो लोग घुमे हुए होते हैं ना, जो रास्ते से हटे भटके हुए होते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं। और फिर कहा शुअरा के बारे में, यानी जो लोग एंटरटेनर्स होते हैं, उस ज़माने के एंटरटेनर कौन थे, शायर, उनके यहाँ कॉन्सर्ट क्या होती थी, रात को सहरा में एक आग लगाई, बारबेक्यू की आग लगाई, सारे सर्कल बनाया उन्होंने, और एक जो है उसने शेर सुनाने शुरू किए, बाकी सारे अल्लाह, दैट्स इट, वो उनकी कॉन्सर्ट थी। अब आजकल तो ये बात बहुत आसान है समझने को, शायर का कामयाब होना और नाकाम होना उसका एक ही स्टैंडर्ड है, उसके पास एक ही मैट्रिक, पैसा नहीं, कौन कामयाब शायर और कौन नाकाम शायर, इसका फैसला कौन करेगा, आप बताओ, ऑडियंस, जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है वो ज़्यादा कामयाब शायर है, जिसकी ऑडियंस कम है वो कम कामयाब शायर है, जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, उसका गाना उसका शेयर वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा कामयाब है। तो शायर की करेंसी क्या है, शायर की दौलत क्या है, ऑडियंस, ऑडियंस, उसको सुनने वाले मिल जाए, दाद देने वाले मिल जाए, उसको पसंद करने, उसके काम को, उसके गाने को, उसकी नज़म को पसंद करने वाले मिल जाए, वही उसकी गजा है। होता यह है लेकिन कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना रिलीज करता है और करोड़ों लोग उसको व्यू करते हैं, उनका फेवरेट गाना बन जाता है, लेकिन फिर क्या होता है उस गाने के साथ, यार ये बंद कर दो बहुत लग गया, कुछ और लगाओ, तंग आ गए सुन सुन के, कान पक गए हैं, सुन सुन के सुन्नी हो गए हैं, बस करो ये। अब वो जो शायर है बेचारा, जिसने उस उस कामयाबी का टेस्ट तो उसको मिला कि उसको मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज मिल गए, उसको बड़ी सक्सेस मिली, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन वो बार बार जाके ना उसके पास जितनी भी दौलत आ गई हो वो YouTube पे जाके वीडियो के अंदर कमेंट्स पढ़ रहा होगा और किसने पसंद किया, कितने पहले पसंद किया, और फिर उसको एक कमेंट मिला, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, इनफ ऑलरेडी, आई हेट दिस सॉन्ग, आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग, नाउ आई हेट दिस सॉन्ग. अब उसके दिल में तकलीफ शुरू हो गई. गाड़ी उसके पास है, बंगला उसके पास है, हेलीकॉप्टर उसके पास है, दिल में तकलीफ है उसकी, यार ये क्या हो रहा है. अब उसको किस चीज की बेचैनी है, अब क्या करना पड़ेगा भाई, एक नया गाना रिलीज करना पड़ेगा यार, वरना तो मैं एक दो महीने में तो मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा और मेरी गजा खत्म हो. उसकी तो गजा खाना पीना तो है नहीं, उसकी गजा है ऑडियंस. तो अब उसको चाहिए एक नया गाना, नई रिलीज. अब उसने नई रिलीज की तो लोगों ने कहा ये पहला वाला बेहतर था, ये तो थका हुआ है. अब वो और परेशान कि अब मैं क्या करूं, दूसरे वाले की सक्सेस पहले वाले की तरह नहीं है, वो अब जरा पॉपुलैरिटी मेरी कम हो रही है. तो अब उसके दिमाग में आता है मुझे कोई नया टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, कोई ज्यादा स्कैंडलस चीज करनी पड़ेगी, कोई और अजीबोगरीब हरकत करनी पड़ेगी, उससे और ऑडियंस को मैं शॉक करूंगा इतना कि वो फिर देखेंगे मेरी वीडियो. यानी उसको अपने सर्कल से बाहर जाके कुछ और ही हरकत करनी पड़ती है ताकि लोग उसको व्यू करें. और जब वो देखता है कि लोग उसको व्यू कर रहे हैं तो अब उसको नई बात समझ में आती है, जितना मैं गिरी हुई हरकत करूंगा उतना ऑडियंस बढ़ेगी. तो ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में वो अगर शुरू में इंसान था, थोड़ी देर बाद वो बंदर बन जाता है. अब बात समझ रहे हो, ये जो एक प्रोसेस है. और मेरे ख्याल से अगर आप लोग कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, आप हर एक के दिमाग में कोई और एंटरटेनमेंट होगा जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, यू नो. और फिर जब ये प्रोसेस शुरू होता है, इसकी ताबीर क्या की है अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन लोगों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं. अगर दुनिया में सोचो किसके फॉलोअर्स होते हैं, दुनिया में फॉलोअर्स होते हैं या तो मजहबी लीडर्स के, किसी बुद्धिस्ट के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी दलाई लामा के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी पोप के बड़े फॉलोअर्स हैं, ऐसी बात है ना. मुसलमानों में भी किसी इमाम के, किसी स्पीकर के. मुसलमान मुल्कों में तो कभी कोई को ऐसे खतीब होते हैं कि वो खड़े होकर किसी जलसे में तकरीर करते हैं तो 2-3 मिलियन लोग ऑडियंस में होते हैं. तो मजहबी मैदान में फॉलोइंग होती है, और इस किस्म की इतने लार्ज नंबर्स की फॉलोइंग कुछ सियासी मैदान में होती है, और एक तीसरा मैदान है, वो कौन सा है, एंटरटेनमेंट का मैदान है, गाने शाने का मैदान है, कॉन्सर्ट्स का मैदान है, उसमें होती है, ठीक है ना. तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें लोग जमा हो जाते हैं बड़े नंबर्स के साथ और लोगों के पीछे आ जाते हैं. और इन तीनों का अगर आप अंदाजा करो, इन तीनों का ताल्लुक जज्बात से है. जो लोगों के जज्बात को सियासत में, जो लोगों के जज्बात को मजहब में, और जो लोगों के जज्बात को एंटरटेनमेंट में टच कर सकता है ना, उसकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है. ऐसा ही होता है ना. और जज्बात का लफ्ज क्या है अरबी में, मशार, और उससे निकला है शायर, ठीक है ना. और उसको अगर अपनी ऑडियंस मेंटेन करनी है, उनके जज्बात को यू नो फर्दर करना है, तो उसको अब एक हर तरह से किसी ना किसी तरह मैं इस ऑडियंस को कैप्चर करता रहा हूं. उसके बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया, इस पूरी कहानी के बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया, कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, तुमने देखा नहीं कि ये हर वादी में भटकते फिरते हैं खाने की तलाश में. ये हामा यहीमून इस्तेमाल हुआ करता था इंसान के लिए नहीं, ऊंट के लिए. जो ऊंट भटक जाता है सहरा में तो उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा, तो एक वादी आती है, तो वादी में उतर जाता है कि मुमकिन है कि वादी के नीचे कहीं पानी मिल जाए उसे, कुछ खाने को मिल जाए उसे शायद। मसला ये कि वादी में उतरना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है। और दूसरा मसला ये कि वादी में उतरने से पहले आप ऊंचाई पर थे और वादी में उतरते वक्त आप नीचाई की तरफ जा रहे हो और नीचाई में गिरने का इम्कान ज़्यादा होता है, और नीचे पहुंचते वक्त आपको नहीं पता आप कौन से ख़तरे में होगे, और हो सकता है कि ये वादी ही आपकी मौत हो, और उसमें और आपको पता भी नहीं कैसी वादी है, लेकिन आप उसमें उतर रहे हो। और एक दफ़ा उतरे कुछ नहीं मिला तो एक और वादी में उतरने के लिए तैयार, फिर एक और वादी में उतरने के लिए तैयार। क्या ताबीर इस्तेमाल की है, प्यासा ऊंट जो किसी भी वादी में उतरने को तैयार हो किसी भी गजा की खातिर। और ये क्या है, वो एंटरटेनर, वो एक्टर, वो एक्ट्रेस जो कोई भी रोल करने को तैयार है ऑडियंस मिल जाए, कोई भी रोल, कोई भी किसी किस्म की भी म्यूजिक वीडियो बना लो ऑडियंस मिल जाए, मैं कुछ भी कर किसी भी वादी में मैं उतरने को तैयार हूं। और इस ताबीर से इंसान का एक मकाम पहले ऊंचा होता था लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपने आप को गिरा रहा है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और अब हम क्योंकि एल्गोरिदम के ज़माने में हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इस ज़माने में है, एल्गोरिदम में क्या होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है और जो इन्फ्लुएंसर बन जाए लोगों की फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, इज़न्ट इट, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है वो देखता है कि इंगेजमेंट कम हो गई है, व्यूज़ कम हो गए हैं, मुझे और देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, फलाने के व्यूज़ ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके व्यूज़ इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि वो इस चीज़ के बारे में बात करता है, मुझे भी इस चीज़ के बारे में बात करनी होगी, मुझे भी ये कुछ करना होगा। यानी अब आपका मकसद, लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप उनके जज्बात से खेल रहे हो, और अब आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, ये आप चेक करते हो उनके जज्बात किस तरफ जा रहे हैं, मैं भी उस तरफ जाऊं। يتبعهم الغاوون لم تر انهم في كل واد يهيمون سبحان الله। कितने 1500 साल पुरानी ताबीर, और आज आप सोचो आज क्या हो रहा है, कितनी 100% एक्यूरेट ताबीर अल्लाह ताला ने इतने कम अल्फाज में बयान की है इस मुहावरे के जरिए। आखिरी आज की इस सेशन की आखिरी ताबीर, ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط। खर्च के मामले में इतदाल करना चाहिए ना, यानी ज्यादा ना करो, फजूल खर्ची ना करो और कंजूसी ना करो। और इसकी इस बारे में सूरतुल फुरकान में भी बात की गई है, والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما। سوره الفرقان میں بھی یہ بات کہہ دی کہ وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور بہت کھینچ کر بھی نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں سورۃ الاسراء میں اللہ تعالی نے اس خرچ کے معاملے میں دو محاورے استعمال کیے، اب ان محاوروں کو سمجھتے ہیں، ان کا تعلق کس چیز سے، خرچ سے۔ ولا تجعل يدك اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھ کو مغلولتن اپنے الى عنقک اپنے ہاتھ کو زنجیر کے ساتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ جوڑے رکھو۔ ایک ہوتی ہے ہتھکڑی جو دو ہاتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سمجھو کہ ہتھکڑی کا ایک جو کڑی ہے اس کی آپ کی گردن میں ہے اور دوسری آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایسے آپ کا ہاتھ یہاں پھنسا ہوا ہے۔ مغلولتن الى عنقك، आपका हाथ यहां तक फंसा हुआ है، ये क्या अजीब सी। और दूसरी है और इस तरह ना हो जाना कि दोनों हाथ खुले होके चल रहे हो ऐसे، तब सुथा कुल्ल बस जितने हाथ फैला सकते हो उतने फैला लो، ये ताबीर है। अब इससे मुराद क्या है कि आप पैसा आपका जेब में है، आप खर्च करने लगे हो، दूध खरीदने लगे हो، ब्रेड खरीदने लगे हो، अंडे खरीदने लगे हो، तो ऐसे मत करना कि आम खर्च के लिए भी हाथ ऐसे गर्दन के साथ लगा हुआ है कि जेब तक पहुंचने में लगे कि तुम अपने आप को फांसी दे रहे हो। لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. ایسے مت کر دینا کہ عام خرچوں کے لیے بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی موت دے رہا ہے. مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں، یہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. مجھے ایک کپل ملا، بیگم شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی، کہتی ہیں میری بھی جاب ہے، ان کی بھی جاب ہے، جب بھی ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے آرڈر کا پے کرتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اب تو پھر دودھ کا بھی کیلکولیٹ کرنے پڑے، کتنی ڈالی تھی چائے میں، اس کو کیلکولیٹ کر کے بجٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تجعل يدك مغلولة الى عنقك. دوسری اس کی الٹی تعبیر کیا ہے؟ لا تبسطها كل البسط. آپ اگر کسی دکان میں جاؤ، آئلز ہوتی ہے نا گروسری اسٹور کے اندر، اس میں ایسے ہاتھ کھول کے چلو، کیا ہوگا؟ جس چیز کو ہاتھ لگے وہ کارٹ میں گر رہی ہے آپ کے، ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھول کے چلو گے نا، ایسی ایسی چیزوں کو چھوو گے جس کو آپ کے چھونے کا کوئی بزنس نہیں تھا. آپ کو اتنی سپیس چاہیے تھی، آپ اتنی سپیس لے کے چل رہے ہو نا، تو آپ خامخواہ ایسی چیزوں کو ٹچ کرو گے جن کو ٹچ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا. جب کس طرح کھول کے کرو گے تو اس طرح خرچ ایسا اور ایسی چیزوں پہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. لا تبسط کل البسط. اور تو اسی طرح اس تعبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کنجوسی اور فضول خرچی دونوں کے بارے میں ایک تصویر کھینچ دی. اوکے، پہیا خاویتن علی عروش، یہ کر دیا، آخری ہوگا آپ کا. اللہ کہتے ہیں بستیوں کے بارے میں جو تباہ کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیاں تباہ کی تھی نا، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر الٹ دی گئیں، اپنی چھتوں پر الٹ دی گئیں. آپ مجھے بتاؤ، آپ کیا اندازہ کرتے ہو کیا کیا گیا ہوگا؟ اگر بستی چھت پہ الٹ دی گئی ہے تو کیا کیا گیا ہوگا؟ یعنی بستی اٹھائی اور پراٹھے کی طرح فلپ کر دی ہے شاید، یا پھر یہ محاورہ استعمال ہو رہا ہے. اور یہ محاورہ قرآن میں دو قسم کے سیاق میں استعمال ہوا ہے. اور عروش کا لفظ سمجھ لیتے ہیں، عروش کے دو معنی، پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں بات. خاویتن علی عروشیا، عرش تو آپ کو معلوم ہوگا، عرش عام عربی زبان میں عرش چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عرش آلسو جو کمزور پودے ہوتے ہیں نا، جیسے انگور، اور اس کے جو اس کا جو تنا ہوتا ہے کمزور سا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو زمین میں ایک جو ہے وہ لکڑی ڈالنی پڑتی ہے اور اس کے ارد گرد وہ لپٹتا ہے، ایسے پودے کو بھی عرش کہتے ہیں، اس کو بھی عرش کہتے ہیں. تو عرش کے دو معنی ہیں عربی میں، ایک تو چھت اور دوسرا کمزور پودا. ٹھیک ہے. اچھا، اصحاب الکہف کے بارے میں، سورۃ الکہف میں جو قصہ ہے دو باغبانوں کا، آپ کو شاید علم ہوگا. اس نے باغ بنایا، اس کے ارد گرد اس نے درخت بنایا اپنے باغ کے، اور درمیان میں باریک اور نازک قسم کے پودے رکھے. نازک پودے درمیان میں اس لیے تھے کہ ہوا چلے تو ان پودوں پہ نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیا حفاظت کرے گا ان پودوں کی؟ وہ ارد گرد کے درخت. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سزا دی اور اس کا باغ برباد کیا تو کہا وہی خاویتن علی عروشہا، اور یہ باغ اس کا الٹ پڑا عروش کے اوپر. وہاں چھت کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ پودوں کی. یعنی جو درخت حفاظت کے لیے لگائے تھے، آندھی ایسی آئی کہ وہی درخت ان پودوں کے اوپر گرے. جو سیکیورٹی تھی اسی وہی تھریٹ بن گئی، وہی نقصان بن گئی. وہاں وہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقی بستیوں کے بارے میں خاویتن علی عروشیہا، اس کو بھی سمجھ لیں. میں نے کہا تھا عروش کا ایک معنی تو ہے وہ پودا، نازک پودا، دوسرا معنی کیا تھا؟ چھت. جب کبھی کوئی طوفان آتا ہے، بہت تیز بارش آتی ہے، یا اولے پڑتے ہیں، या कोई विंड स्टॉर्म आता है, टोर्नेडो वगैरह आता है, किसी को तूफान आता है, बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नुकसान किस हिस्से को होता है? छत को होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोज चीज जो है वो आपकी छत है, फाउंडेशन जो है वो आपकी बची हुई है, वो सबसे नीचे है, दीवारें सिक्योर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसी भी जो जंग के दौरान अगर ऊपर से बमबारी हो रही है, या पुराने जमाने में जो कैटापोल्ट इस्तेमाल होता था उससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहाँ डैमेज होनी थी? छत पे। अच्छा, छत पे अगर जंग ना भी हो रही हो, तूफान ना भी आ रहा हो, किसी ने घर खरीदा हो, तो उसको पता है मसला कहाँ पे होता है? ज्यादा से ज्यादा छत पे होता है। उसमें सीलन आ जाता है, उसमें सुराख हो जाता है, उसमें जानवर घुस जाता है, उसमें से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। मसले हमेशा कहाँ के होते हैं? छत के। और एक दफा छत पे मसला हो जाए, सारे घर में मसला शुरू हो जाता है, उसकी बार बार रिपेयर करनी पड़ती है। अब अल्लाह ताला ने इतना तो बता दिया कि कुछ बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई। जब तबाह बर्बाद हुई तो छत डैमेज हुई कि नहीं? और लेकिन छत को मेंटेन करना और उसको दोबारा फिक्स करना, रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना, उसके लिए कोई था कि नहीं? वो तो सब मर चुके। अब छत की किसी ने रिपेयर नहीं की, किसी ने मरम्मत नहीं की, तो कुछ 5 साल बाद, 3 महीने बाद, 10 साल बाद उस छत ने क्या करना है? उसने गिर जाना है। अब 4 दीवारी रह गई, लेकिन छत बीच में गिर गई। इतनी बात समझ में आई? अब जो 4 दीवारी रह गई, उसकी सपोर्ट असल में जो दीवारों को जोड़े हुए थी और दबाए हुई थी वो छत थी। अब वो दीवारें अकेली खड़ी हैं, अब उनके अंदर सीलन जा रहा है, हवा गुजर रही है, मॉइस्चर जा रहा है, वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं, और फिर 10, 15, 20, 100 साल गुजरने के बाद वो दीवारें भी गिरने लगीं। और जब वो गिरी तो किसके ऊपर गिरी? छत के ऊपर गिरी। वही खाविया आला रूशिया, छतों के ऊपर वो गिर पड़ी। यानी यही नहीं कहा कि बस्तियां बर्बाद हुई, सैकड़ों साल बर्बादी में वीरान रही, यहां तक के छतें भी गिरी, और उसके कई साल बाद दीवारें भी छतों के ऊपर गिरी। और जगह कहा वो मुतफिका था अहवा, और फिर उनको दबा दिया गया। जैसे अगर आप रोमन रूइंस के पास जाएं, या कोई पुराने जो आसार हैं कदीमा उनके पास जाएं, आपको सतून नजर आएंगे, ना दीवारें ना छत, कुछ नजर नहीं आएगा, बस सतून नजर आएंगे। क्यों? छत कई सालों पहले छत गिर चुकी, और उसके कई साल बाद क्या हुआ? दीवारें गिर चुकी, और वो सब दफन भी गई जमीन के अंदर, वो सब थोड़े थोड़े सतून निकले हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं। और ये ताबीर इतने थोड़े अल्फाज में अल्लाह ताला ने सैकड़ों साल की तारीख को बयान कर दिया। वही अखावियतुन आला उरुशिया। तो इस पे इंशाल्लाह
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो फिर वो कहते हैं ये क्या पागलपन है, अनुमिनु कमा आमन सुफा, ये जैसे ये बेवकूफ ही मान लें वैसे हम ही मान लाएंगे। उसके बाद तनकीद शुरू हो जाती है, उनकी जबान से बड़े चुभने वाले अल्फाज निकलने शुरू हो जाते हैं उनकी जबान से। कब? जब मुश्किलात आती हैं। तो असल फर्क होता है, मुनाफिक है तो उसके अंदर एक ही चीज, लेकिन जाहिर कब होती है? जब मुश्किलात आती हैं। जब मुश्किलात नहीं होंगी तो ईमान की बात करेगा, जब मुश्किलात आएंगी तो अपने असली रंग दिखाएगा। अच्छा,
2: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर FM। इंस्पायर FM। इंस्पायर 105.1 FM।
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Every act of charity is an investment for the hereafter. Whether it's a smile, a kind word, or a helping hand, give for the sake of Allah. Allah promises to multiply the reward of those who give sincerely. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that no comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: After we finish eating and drinking, we say, Alhamdulillah.